0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे, जीवन में रहते पुरानी दुनिया में रहते तमोगुणी वायुमंडल में रहते ज्ञान के खजाने आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्तो कमल पुष्प समान न्यारे से चिंताओं से अशांति से मुक्त हो जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त संकल्पों के तूफान से मुक्त हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ के नहीं आएगा कहाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, समन संपर्क हुआ, बदल गए। अचानक ही हुए ना, सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, सोचा था। अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे 2000 तो सोचा था, वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी, किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेंगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुना ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले सुना देते हैं, अलबेले कभी नहीं बनना किसी भी बात में। चार सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए अलर्ट, उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, समय नहीं देंगे, अभी जमा कर लो, जितने चाहिए जैसी चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Deus.

छोटे छोटे फिर संकल पे, लेकिन कभी भी धोखा समय पर दे सकते, इसलिए फियरत को भी कब करो टाइम क्योंकि इस शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे हाथ उठाओ, तो बाप दादा यही सौगात चाहते हैं रत को समाप्त करो, अटेंशन दो, बुराई बुराई के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन फियरत के ऊपर भी अटेंशन देना है। पसंद है ना, पसंद है, हाथ उठाओ, पसंद है तो सब पास हो जाएंगे, पसंद

Ese es el tipazo. José. Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: 别是有机的，我都够
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Master Sarveshaktivan.

0: ऐसा वरदान सदा याद कर, कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रई बन जाएंगे। अभी समय के समित परमान वरदानों को हर समय
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

Nossa.

Sí.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अब बाप दादा भी समझते हैं, एक विचार कर, अलग अलग विचार तो होता ही, लेकिन विचार को मिलाना वो अपने हाथ में होता। तो बाप दादा भी आप निमित बने हुए पांडवों, ये कमाल देखने चाहते। विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मिलाना भी होता है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर बाप समझ के कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकता। अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ऐसा नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी पाप माना दिल से तो वर्षे के अधिकारी बन सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी अपने अंदर चेक करो, मेरे वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है। Shop.

बदलने वाली है ही नहीं। आप क्यों जजमेंट देते हो, वो तो बाप जज है ना। आप सब जज बन गए हो एक दो के, बाप भी तो देख रहा है ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विषय

ऐसी आत्माओं के पृथ्वी सदा रहम दिल बने कि किमिया के सागर बने, लेकिन अच्छा आपने अपने वृत्ति में किसी के पृथ्वी अगर नेगेटिव भाव रखा, इसे

0: बात सामने आएगी वो बाप दादा देखती है उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेज फुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है ये रॉन्ग है ये राइट है, नॉलेज फुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रंग है, क्योंकि अपने में मोटाफ व्यर्थ संकल्प याद की पावर कम नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो ये तो आत्मा ही है। अगर वृत्ति वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है, वृत्ति से वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी पाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपने वृत्ति को अपने लिए दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो, नॉलेज नॉलेज फुल भले बनो, लेकिन अपने मन में धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचरा। अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया वाणी से परिवर्तन, सिक्का से परिवर्तन, बहुत धीमे गति से होता है लेकिन बहुत धीमे गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेज फुल बन स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Hippie.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

याद करने वाले बच्चे वाह बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा सभी के मन में

It

Kushiki. Jala. Sapasht. Yo te lo...

Pap Kajikit Papapapa Pachokabi Jikit Papapapa Arar Kisikil Me Fafa Kitchen स्पष्ट दिखाई दे रहे, कोई गीत के रूप में, कोई

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के गर्भों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, रिजल्ट में क्या देगा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न, जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है, इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता, क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे हैं किस में मेरे कोई नुकसान है। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा।

Oh, shit.

Oh, shit.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है मेहनत बहुत करते। अगर दिल साफ हो जाए मेहनत नहीं, दिल आराम दिल में समाया रहेगा और आप दिल आराम के दिल में समय हुए रहे, दिल में बाप समाया हुआ है माया की किसी भी रूप की, चाहे सूर्यम रूप हो चाहे रायल रूप हो चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वपन मात्र संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती, तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना बाप दादा। मनसा में भी मेहनत मुक्त देखने चाहते, मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते। होली मनाना माना मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूति में रहना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक ही

Exacto.

0: किस्सा काट में आ जाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने के वायुमंडल चाहिए, कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे में। अगर आप फोटो निकालो ना, तो आपको खुद लगेगा के और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना, पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द छोड़ो। अभी बाप दादा हर बच्चे को ये तो मास दिए, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा

मन के मालिक, जिस मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बांह को चलाते हो, जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ रखो, रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो, आज मन के रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए, तब समृद्ध बन वायुमंडल में समृद्ध पन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समापत्ति कराने चाहते। सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो दीवार। करना ही है, करेंगे, देखेंगे, ये के नहीं चलेगा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा आज भी सभी बच्चों को चाहिए

देखें।

बच्चे धर्मराज

think of. Chal rahi hai, chalta hai nahi. Chama.

स्वयं हाथ

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विशेष पाप दादा आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नया कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली। वर्गीकरण का भी कार्य अभी काफी टाइम चल चुका, कॉन्फ्रेंस भी चल चुकी, युद्ध यात्राएं भी चल गई। अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो, सोचो, जिससे आवाज सहज फैल जाए। अभी तक जो भी किए सेवा के प्लान बाप दादा को पसंद है और वृद्धि भी हुई है, लेकिन बहुत समय चल चुके ये प्रोग्राम्स। अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो, कोई भी करे, छोटे करे तो इन्हें एडवांस मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सोचना।

Sí, man.

Sonderlich.

você.

ऐसे नहीं, युग में जीवन मुक्ति मिलेंगी। अभी भी इस

Sí.

बात में शराबी मुख से नहीं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बच्चे सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा वा नहीं होगा, ये होगा। इस सोच में ज्यादा रहते, ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा कब गीत गाते रहते। लेकिन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी कभी लिफ्ट

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इसके

一个为内，就是他。

Tiamat.

Was?

abbassando. Thank you.

FM.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आगे के लिए अब दीवार पुशारत कर, आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ता सफलता की चाबी। तो बाप दादा जो भी आज बचे आए हैं वो लोगों विशेष दृढ़ता की चाबी की। So

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समझ अचानक के खेल बहुत होने और बाप दादा के चाहता है एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चले। इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है शुभ भावना रखी और कोई नहीं बदलता है तो आप अपने को बदलो। उसने ये कहा, उसने ये किया, इसीलिए मुझे भी करना पड़ा, ये नहीं।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने सुनाया था कि चाय दादी के लिए कहेंगे ऐसे कि बेशक से पूछेंगे, कहेंगे कुछ नहीं है, तो ये पेशेंट नहीं है। पेशेंट स्वरूप दिखा रही, बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी चल रही है वो अपने मस्ती में। ये प्यूरिफाई शरीर से अपना लास्ट स्टेज और भविष्य संस्कार पाठ बजा रहे। बाकी 24 सेवादारी सेवा करते हैं वो भी दिल से कर रहे हैं। Thoughts we need.

0: 喂，
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने तो बहुत समय से

0: की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग रंग में प्राप्त किया है वो अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से, दिल से बांटो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगा, जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आते हैं, ठहरने देते हो, फौरन उड़ा देते कि बैठने देंगे। अच्छा मच्छर पले आओ, कोई भी समस्या क्या है, मच्छर और मक्खी तो है, फौरन भगाओ, उनों का काम है आना, माया आने का काम नहीं छोड़ती, लेकिन भ्रमण भगाने के काम में कभी कभी थोड़ी देरी लगा देते, माया भी सुन रही है। तो ये प्रतिज्ञा कर रही है, वो भी अपना द्वास

0: आप याद करो मेरा काम भगाना, वो भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी, आप विजय पाना नहीं छोड़ो। तो क्या अभी छोटे छोटे मच्छर और मक्खी को आने नहीं देना? स्थिति के आगे ये छोटी छोटी चीजें क्या है?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं,

रिजल्ट में।

me!

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पवित्रता की कमी उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुन।

Asrap Brahmacharya.

0: कैसे पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र डबल पवित्रता प्राप्त।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वारिस की भाषा तो समझते हैं, समझते हैं ना, जो धन से मन से सहयोग से सबसे नंबर वन हो और हर कार्य में

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके चरचित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना मंदिर पे जाते हैं, तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना, दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते।
2: लास्ट जन्म में भी

आता

0: Sneezy.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है अपने मन की वृत्ति। किसी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्मा बाप के पुराने बच्चों के वृत्त ये बोल रहे कि अगर कोई कहता है कि शिवा है ही नहीं, बहुत करती है लेकिन शिवा दिखाई नहीं देती है, कोई सेवा के लिए मिलता नहीं, तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल भरा हुआ है और इस आंख चाहिए वो नहीं, बाकी जंगल में शिकार नहीं हुई हो ही नहीं सकता। कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो, ये कैसे हो सकता करने की फिति नहीं आती।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप तो खुश रहते हो इसकी मुबारक।

Yo.

Yeah.

0: सफल करम सेवा में वृद्धि होना अर्थात खजानों को सफल किया और करें तो इस वर्ष इस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाना तो सदैव वृद्धि होती जाएगी। हिम्मत दिलाओ, बाप दादा ने देखा है कोई कोई स्थान
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश, बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता। साथियों में, सेवा में, वायुमंडल जैसे नारियल तोड़ के उद्घाटन करते हो, रबन काट के उद्घाटन करते हो, पहले इन चार बातों की रबन काट और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, ये पानी डालो धरनी में, जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले ये नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती, नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता। सेवा सब करते हो लेकिन नंबर बाप दादा के पास रजिस्टर में नोट उसका होता है जो निर्विघ्न सेवादारी। बाप दादा के पास ऐसी सेवादारियों की लिस्ट है लेकिन अभी बहुत थोड़ी है, लंबी नहीं। भाषण करने वालों की लिस्ट भी आपके पास लंबी है। बाप दादा उसको भाषण करने वाला कहता है जो पहले भाषण दे सबको फिर भाषण। भाषण तो आजकल स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां बहुत अच्छा करती है, तालियां बजती रहती है, लेकिन बाप दादा के पास लिस्ट वो है जो निर्विघ्न सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाले।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप कहिए, हम तो नहीं चाहते लेकिन वो आ जाते हैं। Up.

讲。

God.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

amica. Some.

Schnee.

safe.

Ocho. Oscar. Maname. Anbócaro. Jesse. See?

20. Exercise me. Bis ich

Exercise.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जब भी बाप को टाइम मिलता है तो क्या दिल में होता है, मेरे बच्चे लाडले बच्चे, अब बच्चों को टाइम मिलता तो मेरा बाबा ऐसे है ना, ऐसे है, हाथ उठाओ। अच्छा, बोलने की चीज ही नहीं है, कितना भी बोलने की कोशिश करो लेकिन बोलते हुए बोल नहीं सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं बोलता है, बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं बोलते, क्योंकि सिक्की लदे हो। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से आपको ढूंढ रहा, आप बाप को ढूंढ सके भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके, और बाप ने बिना बिना देश साथ देखी न देश देखा न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं, साथ देखी बाप ने, काला है गोरा है, शाम है सुंदर है, कुछ नहीं देखा, मेरा है ये देखा। तुम बताओ बाप का प्यार है या आपका प्यार है, किसका है? दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार है, कहती है बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है तब तो खींचता है। होशियार है बच्चे भी, और बाप को खुशी है रखने वाले बच्चे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस, स्थित हो जाओ।

0: अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा तो कर रही हो, खाली तो नहीं बैठे हो। जैसे पाप फाट डालती है ना, आवाज हो जाता है, ऐसे कोई आत्मा पाप लगाओ, एटम पाप नहीं, आत्म पाप। अच्छा बैठ जाओ, मुबारक को बोल, टाइम पर पहुंचने की मुबारक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते अपने चल में ले।

చెప్పనే నంబర్ 1 సంతానం బాప్ దాదానే ఆప్ కుటుంబమే

विश्व के

चल रहा है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप भी

Draco. Bis sie.

जोड़।

Isso.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है। अपने से ही प्रॉमिस भी बहुत करते, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, लेकिन कारण क्या होता है? कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है। बीच बीच में अलबेलापन आ जाता, हो जाएंगे बन जाएंगे,
2: क्या करेंगे।

fishes. Attention to up.

0: पिसी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मटक को पिसी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रहो, मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर वन बन।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं, बस बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

खुशी और शक्ति मिली।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी बच्चे

Shh.

Yep.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पुरुषोत्तम संगम योगी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा भी बच्चों को मधुबन में देख खुश है। कुछ भी हो वे ना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम छोटी मोटी आवे

बच्चों के मन में खुशी

0: 切。Mad o fan. Me Anna. Artan. Porsche.विशेष छूटे वालों को याद दिलाया जाता है, इसलिए मधुबन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Воплавда на их красоту.

0: जो चाहिए वो दे सको, अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मालिक सदा मालिक होता है।
3: कितने वर्षों से जुड़ा
2: हूँ? अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको, तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेते रहो, बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिसे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे।
3: मेरे ऊपर निर्भर, उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जो मेरे ऊपर निर्भर है
2: वो अभी ठीक, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति बढ़ेगी, दोनों को भी शक्ति बढ़ेगी, हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कह के और शक्ति।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं,

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है?

Mesa.

जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे

Kidnap.

Sick.

0: smoke it off of me.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा एक बात का सिमटती दिला रहा है कि कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारियों मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं हो। बड़ी दिल वाले बनो, बाप की दिल कितनी है छोटी है। जब बाप बड़ी दिल वाले हैं तो बच्चे छोटी दिल कर देते हैं, बीमार हो के तो रोना शुरू कर दे, दर्द हो गया दर्द हो गया, तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी के बारे जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया तो हिसाब किताब आ गया ना, तो दिल शिकस्त से बीमारी को मरा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बन, तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं क्या करूं क्या करूं, और फिर सोचो बाबा तो मदद ही है, मदद उसको मिलती है जो हिम्मत। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करते ही नहीं, तो आती अक्षर याद नहीं करो, बाबा मददगार है लेकिन किसका, तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करते ही नहीं, हमको तो देखते ही नहीं। पहले आप महारथी पीछे लेकिन दिल शिकस्त नहीं मन, और मन में अगर कोई कोई उलझन आ भी जाती है तो क्या होता है? ऐसे समय पर धैर्य शक्ति शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन पाप के तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाए। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो और धन भी नीचे ऊपर होता है। जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग क्या हो उसके तो नहीं, लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी है सच्चे तो कैसी भी हालत में बाप दादा ताल

som sinne i de lande Garud. Det kan sinne

जब आप लोग खुद कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, परिवार में खिटखिट नहीं हो, ये नहीं होनी है, लेकिन आप ट्रस्ट

hasti bat kisu cege to or karban ho mele bilkul yaade just with you mera nahi ye mera ban mera naam kharab hoga meri gilani hogi mera bachcha aur mujhe meri saas mere ko aise karte ye mera banata hai na to sab baate mera jahan bhi aaya वहां उत्तीक का फेरा हो जाता है, बदल जाती है। अगर उत्तीक कहां भी बदलती है ना उलझन में, तो समझ लो ये मेरा पन उसको चेक कर और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझे। इसलिए सभी बातों में ज्ञानी बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना। ज्ञानी बनेंगे हाँ ये बात है, क्या नहीं बनेगी।

0: பரத்வன். Our son shows father. Ka pat pak karo. Ka chang karo pak karo. So be mat valeo. E mate.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब दादियों को देख के खुश होते हैं, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है।
2: साक्षात्कार होना है,
1: और कुर्सी पर आ गए हमको उठाने के लिए।
2: उसको उठाने के लिए
1: एक दो को देखो फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है, ये फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है, दादियों से ये सीखो, शुभ भावना शुभ कामना। तो स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में ताता कम बनते हो। नेगेटिव न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आती माला भी रुकी हुई? ब्रह्मा बाप ने कहा चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के मर्ज करते गए, जैसे आपके सोन है ना, तो ऐसे एक एक सोन नहीं, सोन तो बहुत बड़ी बड़ी है ना, एक एक विशेष देश इमर्ज करती गई और सबकी चेहरे देखती गई। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता, अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे और माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितने सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़ी है, अच्छी आगे बढ़ी है, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है, वो यही बात कि निर्माण

Come on.

0: بيه مكسودة سكينة بيه
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। Écoute.

Up.

0: gift to me though.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

दृढ़ संकल्प अपने दिल में करो। छोड़ना है अपने दिल में सोचो, लेकिन रोज अमृत वेले के बाद उसको चेक

そっか。

Peace.

संकल्प सामने लाना। और रोज़ हम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी बाप दादा ने चोटरल बताई थी, याद है? पांच पांच मिनट सारे दिन में एक बार ड्रिल करनी है, वो की है जिसने वो ड्रिल की है, वो हाथ उठाओ। की है, की है, दोनों ने हाथ उठाए। क्यों? तो थोड़ा टाइम और टाइम नहीं किया, तो अभी क्या करेंगे? कम से कम बताएं, कम से कम बताएं, आज कम से कम आठ बारी सारे दिन में कर सकते हो, कर सकते हो तो इस वर्ष का होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क दूसरी सीजन तक कम से कम आठ बारी ये ड्रिल जरूर करनी है, जरूर। देखेंगे नहीं, चाहे मिस हो जाए तो एक घंटे में अनेक बार करके पूरा करना, नींद पीछे करना, सोना पीछे, पहले ड्रिल आठ बारी पूरा करके पीछे सोना।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज के दिन फरश को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो। हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना संस्कार को सदा के लिए हाथ उठा रहे हो, फिर से

ने भी हाथ उठाए। उन सभी बच्चों को चाहे यहाँ सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं, सभी बच्चों को बहुत दिल से क्या दे रहे हैं। मुबारक के साथ

tapi babda tapi money man be dance.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Peace.

0: essa cadia a pramanatmao ki sve aur koi nahi kar sakta.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा ये।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज से देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, पीछे वाले हाथ हिलाओ। But now.

विश्व की परिवर्तन

Action.

जो अपने वायुमंडल को जा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा, को पता है हाथ उठवाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है, अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चीकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पान मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सुख्यम चेकिंग फिर भी अपने आप को करो, और अगर ऐसी सुख्यम चेकिंग में पास हो बहुत अच्छे हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

frazzo de function de usme hamara bhi part hona chahiye agar bhi hum log ko kab chance mile aur aapki ichcha hai आप इशारा भी करते हैं लेकिन आप लोगों को चांस नहीं मिलता है तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता चलो महाक्रोध उनके प्रति व्यर्थ संकल्प चलेंगे चलेंगे ना तो वो पवित्रता तो नहीं हुई ना अब फर्क करना विचार देना इसके लिए जुटी है उस विचार को इच्छा के रूप में बदले नहीं कर जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है से क्रोध भी होता है या तो आत्मा भी जलता है क्रोध लेकिन विचार देना स्वार्थ होकर के विचार स्वार्थ रख के नहीं रंग नहीं लेकिन

什么？

0: sur vos tirs. Nemet bonne oui.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सेवा में नवीनता क्या लाएं? जो अभी तक सेवाएं चली हैं उसके अलावा अब नयापन क्या लाएं?
4: नयापन ये लाओ जो आने वाली है और लोगों नजदीक कम से कम स्टूडेंट तो बने, कभी कभी आने वाले संपर्क खुद बनावे, ऐसी रिजल्ट आने वालों की होनी चाहिए। अभी आए अच्छा है, अच्छा है चले जाते।
3: संदेश तो बहुत मिल गया सबको, बहुत जा भी रहा है और मिल भी गया।
4: अभी नजदीक आना, कम से कम स्टूडेंट नहीं बने लेकिन आने वाले मिलने वाले सुनने वाले तो बने, कम से कम बोलने तो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बार कहते हैं बाबा आज वो चैन बाबा भूल गए, बाप दादा सुन के कितना आश्चर्य लगता होगा, भूल गए 63 जन्म और छोटा सा जन्म 21 फुल जन्म भूल गए, अभी भी भूलना रहा हुए क्या? इसीलिए अभी माया की चतुराई को
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी खुश राजी और कदम आगे बढ़ा

0: Папа, типа. Еба, барбатюка. Милан. Апаре. Ор апаренька.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के स्मृति दिवस पर एक एक बच्चे को स्मृति चाहिए इस दिन की, तो सभी बच्चे इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख और अपने में धारण करे विशेषता दिन में विशेषता धारण करे। जो भी अपने में कमी समझते हो उस कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना। सोने के पहले ये संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहरा कर हमेशा के लिए अटेंशन दे दे दे दे पाप समान बन जाना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

हो।

precisa beber. Magic.

Check.

experiencer.

Dice Yogi que

उसे अधिक

Chubby Sim.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा जमा कर सको उतना करते जाओ, क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जवाब पूछे बनेंगे, तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी नहीं दुआएं देनी है आपको, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे होना,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति डरने बहुत अच्छा करती, इसीलिए देखो कोर्ट में भी तराशो निशानी तराजू इसलिए दिखाती है, एकाग्र कांटा हो जाता तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों और हलचलो उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति वहां एकाग्र हो जाए, डरने हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुनाई दिलाती और दृढ़ता सफलता की चाबी। ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो, ठीक है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा ने देखा अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश, बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा, कोई थे क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है, अनुभवी स्वरूप, सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप। तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी, शरारत करते हैं बाप दादा ने, फिर भी मुबारक दी जो पुरुषारत करके आते मैं जा रही। की सक।

Gdzie si mam dada? Pra mama ma kodejka. Powerful. Fristy.

0: 听不见。
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

wanted to. But what monkey begged you? The Malikoke. Is

0: Santana. Ô Santana, Cuxi. Que fechista.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: औरों की सेवा की बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नासिक समय आना है। ऐसे समय पर आप मूर्ति कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वो अनुभव करेंगे, जैसे अभी अनुभव करती है ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे, शांति मिल गई फरिश्तों द्वारा, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतवाक अर्थात अंतम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। आता है अपना रूप सामने, मार्च करो, कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे, सकाश दे रही है। तब कहेंगे जो आप गीत बजाते हो ना, एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई, शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिमान स्वतः सिद्ध हो जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना, तभी ऐसा करना पड़ा। सने की वजह थोड़ा थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। ये नहीं, इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परमधाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है, आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं के दिल तक ही अच्छा लगता है, ऐसे है ना? आपके दिल में पाप रहता, आप पाप के दिल में रहते रहते
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे कौन रहेंगे? आप ही हो ना, चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतक। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो पाप मेरे कंबाइंड है, चिंता पाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्यों का पाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना, तो बच्चे मुरझाए हुए किसके बच्चे? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे बाहर आ जाए, लेकिन बाहर को भी आप रुई बना सकते हो। बाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो बाहर है वो रुई हो जाए, क्योंकि सर्वशक्तिमान को साथ कर दिया ना। आप भले कमजोर हो, लेकिन सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है, तो समय में काम में लगाओ, कहने तक नहीं काम में लगाओ, तो सदा खुश नेमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब खुश नेमा चेहरा देखना हो, तो भगवान के सेंटरों पर देखो, करे चैलेंज।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज का दिन प्यार का दिन है, तो प्यार में तो सबसे समझदार तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो नहीं करना है वो नहीं कर लो बस। बाप दादा अभी विश्व परिवर्तक बनने के लिए हर एक को निर्विघ्न बनना और साथियों को बनाना
3: विश्व परिवर्तन।

0: Pisuako pa na ni Valio. Papta na to chota sa kam dili. Sangkalap karteo. Hato rao. Sangkalap karne vali. खुशखबरी सुनेंगे ना सुनेंगे सुनेंगे इसमें याद रहो अपने नजदीक वाले साथियों को छोटा सा काम देते हैं सभी को नहीं कहते
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन, कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन, जैसे ये साइंस का साधन कार्य करती है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना
2: be

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सक्सेसफुल कभी भी क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो के मानते भी हो, सिर्फ कहते हो या मानते हो? क्या मानते हैं? तो क्यों नहीं सफलता होती? कारण क्या? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है ना, अधिकार है शक्तियां पीछे वाली सुना अधिकार है।

0: कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, तुझे अपना ही कमजोर पर्सन जितने लेकिन पर्सन
1: शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है, किया कि कर रही है, करना तो पड़ेंगे ही। लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है, ये मरना मरना नहीं है। जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना, इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी को अपना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे, पक्का है ना? साथ रहेंगे ना, बाप को अकेला नहीं छोड़ के चले जाना, अकेला तो नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो, पापा मेरा पापा, पापा हंस रहे, आपकी समस्या को हल कर देंगे, दिल से बोलना, पापा ये बात है, पापा ये करो, पापा ये, पापा बंदा दिल से, ऐसे नहीं मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो, पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता, अचानक के खेल होने कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते, कहते हैं कि समय
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है।
2: खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सभी बच्चों से खुश है, लेकिन

So.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है, दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते। बाप दादा तो सब वाली स्वास्थ्य शक्तिशाली।

0: संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह, दृढ़ संकल्प किया लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है, इसीलिए सफलता भी कभी आती कभी पौनी परसेंटेज में हो जाती। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता ये भी 100% हो, ज्यादा भले हो कम नहीं हो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही है और फिर भी हम ही होंगे, ये निश्चय विजयी बना दे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा कहते हैं, अगर किसी भी रूप में एक बाप का संबंध भी याद है, बाबा दिल से निकले बाबा, मंत्र माफक नहीं बाबा बाबा, वो राम राम कहते हैं आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खुशी में नाचते भी रहता और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी सम्मान संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट स्टॉक है। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जा फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई कौन का गिफ्ट दो, मौके से नहीं। समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज परिवार राज अधिकारी आत्माओं के सभी संबंध में होगा, तो विश्व परिवर्तन कही विश्व राज अधिकारी बनता है। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन, देते चलो तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज में हर आत्मा भरपूर रहेगी। मुबारक हो, उत्सव मनाते हो, जो भी सामने आवे मुख से ऐसे शब्द बोलो संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो से मिलेगा वो हर समय दिल से मुबारक कहो या दुआएं कहो वो अवश्य देगा। तो सदा बोलो ऐसा समान संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले वह दुआएं निकले ऐसा शब्द नहीं निकालो मुबारक लाइक

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेंटर तो सबसे
2: सब ठीक है, ब्राह्मण परिवार भी ठीक है,
1: फिर भी बॉम्बे बाप का बाप का परिवार है। लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इसको जरूर बनाना। ये तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे।
2: गुलाबा सेंटर में तो बाहर नहीं निकलते हैं अभी, वहाँ हमारी बहनें भी जो है वो बाहर नहीं निकलती।
1: इससे बहुत कुछ होना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं, एक स्वयं को वरदान देता, जो सहज पाप का प्यारा बन जाता, वरदाता पाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए पाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो टाइम पर, सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज

استدي سباب سمان قادية كارتي فرشت

Sí.

0: Richardson. तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देंगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कहीं जब का थोड़ी बहुत हलचल होती है ना तो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। अगर गहराई में जाए ना तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में वाले बहुत माल लेके आते हैं। ऊपर ऊपर वाले नहीं, ऊपर वालों को तो मछली मिलेंगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते। तो यहाँ भी कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी। ये बाप दादा नहीं कहेगा बातें आएंगी नहीं। जितना आगे जाएंगे उतने सूखे

0: जाते हो ना तो छोटी बात भी बड़ी बात लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो बाहर भी रोई बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बारी पास हुए हो, कितने क्लब पास हुए हो पता है? है नशा अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं। अभी रिपीट करना है, नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है। ये स्मृति रखो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब ये दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए। एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं। ये दो बातें धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाए। जैसे अभी ब्रह्मा कुमारियों के बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। जैसे अभी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गई है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारियां मन की शांति, मन की उलझन, मेडिटेशन से दूर कर रही है। ये धीरे धीरे अभी कोई भी मन में अशांति वाला समझता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इसका साधन अच्छा है। धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है। ऐसे ये दो बातें अथॉरिटी वालों के पास प्रसिद्ध हो जाए। एक दो अगर सेटिस्फाई हो जाए और ऐसा बेफिक्र होके कहे कि ये बात समझने की है, तो धीरे धीरे ये बात फैलती जाए। भाषण तो अभी कहते ही है कि ब्रह्मा को

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: योग लगाते हो, अमृत वेले बैठते हो, लेकिन नहीं होती।

Chocolate.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: डबल विदेशी परसेंटेज के बिना फुल बन गए तो बाप दादा चाहे भारत वाले भी अगर फुल पास हुए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा, क्या करेगा? बस रफ शाबाश दे देगा और क्या करेगा? क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले अपने पांव में समा दे, बड़ी बड़ी बाकी आपको महसूस बाकी मिलेगी और साथ साथ ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ प्यार है ना बहुत, तो बाकी के साथ साथ अमृत तो बाकी मिलेंगे और सारा दिन क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाती है ना, इन्होंने तूफान आया, पानी भर गया तो क्या हुआ? सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो स्थूल बात छत्र छाया बन जाए। करके देखो, क्यों कर ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं। और कुमारों के बिना से

0: Charles Patau, komárom, képen a szintre Charles a te. Ne, Charles. Komár. Képesíta, ég bohat a csíje. Komár. Csodrát szakalap kari. वो प्रैक्टिकल में ला सकता क्योंकि सुकुमार उल्टा तो करेंगे नहीं सुल्टा ही करेंगे तो कुमारों में दृढ़ संकल्प की गिफ्ट है चाहती है वो कर सकती है ये गिफ्ट है बाकी जो उसका नाम के हाथ में है लेकिन कुमार गवर्नमेंट भी चाहती है कि कुमारों का सुकुमारों का कुमार नहीं अभी बाप दादा की ये इशारा प्रैक्टिकल में नहीं लाया सारे विश्व के कुमारों का ग्रुप मधुबन में इकट्ठा हो और प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर यहाँ आवे कुमार अपना जलवा दिखा सकते कुमारों का ऐसा ग्रुप साथ ले जाओ कोई कहाँ का कोई कहाँ का कोई कहाँ का और डायरेक्ट निमंत्रण देवे सब देशों के और निमंत्रण देवे डेट फिक्स करे कुमारों में तो बाप दादा की बहुत बहुत बहुत शुभ उम्मीदें हैं और पूर्ण होनी है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई है, क्योंकि संगम समय अचानक समाप्त होना है। एक समय दूसरा संकल्प दोनों की
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो, फिर बापू याद करते हो थक गए अभी क्या करे, थको नहीं। Saturday.

0: शक्तिवान सात का ऑफर कर रहा है। ऐसी ऑफर सारे क्लब में मिलेंगी मिलेंगी नहीं मिलेंगी तो बाप दादा भी साखी होके देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। संगम युग के सुख और स्विचों को इमर्ज रखो बिजी होने के कारण बुद्धि बिजी रहती है ना तो स्मृति मर्ज हो जाती। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है बोलता है बाप तो क्या कहेंगे नो। अच्छा ये तो राइट है कि याद रहता है लेकिन ये मर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है स्थिति क्या होती है। इमर्ज रूप की स्थिति और मर्ज रूप की स्थिति इसमें अंतर है, है, है अंतर है पांडव है अंतर तो क्यों नहीं इमर्ज रूप में रहते। इमर्ज रूप का नशा शक्ति संयोग सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। भूल नहीं सकते ये राइट हाँ कोई विघ्न की वश हो जाती है तो भूल भी जाता है लेकिन वैसे जो नेचुरल रूप में रहते हो किसी को।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा कितना वे आने का कारण थे अपमान का, मैं शब्द थे पान का, मैं एक है, मैं आत्मा हूं ये मैं, अपमान का भी होता, अपमान का भी होता और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिरा। तो बाप दादा आज क्रोध जीत
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी कर्म आरंभ करते हो रोलिंग पावर, रोलिंग पावर वाली आत्माओं साधारण कर्म शुरू हुआ। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना, उसमें

0: जैसे हथके मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य के सीट पर सेटोगे फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिक बन के स्वराज अधिकारी किसी सेट होके फिर हर कार्य करो इस मालिक बन के अथॉरिटी चेकिंग को और बढ़ाना है। और इसकी निशानी है रिजल्ट सफलता सहजन्म।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी दिल से विश्व सेवा प्रेत झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत बहुत बहुत पदम पदम गुना।

0: Afke to dil mein shubha baithe, dil aaram hai har ek ke dil ka dil aaram, aur yehi dil ke dil aaram se sada amrit और मुबारक देते रहना। ये तो लोगों को सेवा के अर्थ, जहां तहां झंडा लहराती है तो उनके दिल में भी स्मृति आवे, मेरा बाप कौन पहचान। सभी को पदम पदम पदम गुना मुबारक है, मुबारक है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा अभी क्या चाहते? हर बच्चा क्यों कह बाप दादा कुछ समय से लेके वार्निंग दे ही रही है समय की। हर बच्चे क्या पढ़ाई का रिजल्ट का समय अचानक सदा एवर रेडी।

এবার পুরুষাটাতে চল রে নেই ওর রে What's up?

साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे योग भी दे सकते हो। सकाश दे सकते

broma babakotika. Cepi koi bachane ne. Thora anchal me. Vashrirak. Hisab kitab mera. Tu savere savere. बच्चे को साइलेंस की शक्ति की सकाश दिया और वो अनुभव

इस साइलेंस के सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टेंस अनुसार ये बहुत ध्यान में रखो। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक की नहीं होगी तो किस पे जमा करेंगे? इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने जाओ उतना कर सकते। वैसे भी जो करना है वो आप कर लो, जो सोचना है आप सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वो सोच रहेगा और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। ये करते थे, ये करना था तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाए। इसलिए

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कुछ

0: और शरद कर रही है। जमा का पुरशरत आप ही कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले जाना। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से, ऐसे ही बाप दादा।